दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमी को झेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो।

मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला ठेला ठेला, अरे ठेला।

बाटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

उजाला रेडियो दे अवे प्लेस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

काम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले

फाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेबे प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो देबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

माँ शेरावाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है, फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं, वो मनुष्य के अंग खरीद कर अच्छे पैसे देता है। तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, हाँ आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा, बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा। तब संत ने कहा, तो ठीक है दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे दो हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे, मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा तो ऐसा करो अपनी दोनों टांगे उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो दो ना सही, एक टांगी बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं। नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है पूरा शरीर 1,00,000 में बेच दो। नौजवान बोला, 1,00,000 तो क्या, अगर कोई 1,00,00,000 भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें, भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का यह शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को। नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, वत्स मानव शरीर एक अपार खजाना है,

निहरंग से काम लो। इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदम्बे का आह्वान कर, मां शेरावाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी। तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के दर्शन कर।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 59 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 59 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं मुक्का सिंह के आवाज में। मुक्का सिंह ओक अवेश अब उजाला Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Mee. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest zondag. Nee, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. To Bemisa. Mukasing met Express zal

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag में Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

मेरा दिल अब तेरा हो साजना, लता जी की आवाज फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मेरा दिल अब तेरा हो साजना, उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। फिल्म स्वयंवर का गीत और आप सुने मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर से। अगला गीत लता जी से आप सुनेंगे।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

उजाला रेडियो एक ही स्टेशन पूरा देश में तमाम हॉलैंड में उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं मुक्का सिंह की आवाज में। मुक्का सिंह ओक अवेशक अब उजाला ब्रासा मेला फेस्ट 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag mee. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. To Bemisa. Mukasing met Express zal erop.

0: या तू बेमिसाल बाटे।
1: हाँ हमारा दतवा देख तो हमारा दतवा देख तो कितना कितना बेमिसाल है।
0: हम माँ ही बोला कि तू कावले तू हंसे तो तू दतवा ऐसा बड़ा विशाल देख रहा था चमकेगा है ना
1: एकदम जैसे सोना
0: सोना सोना सोना
1: देखा तो ऊपर वेख है अन सोना के दांत
0: ना ना हमने नहीं मां
1: ना मोले के तो क्या
0: ना मैं कब ना मोले चीज वाला है मां सोना के दांत कहे के वो ऐसा तो इंसान है सुरीनाम हम देखी ना खानी सुरीनामर्स के और सुरीनामर्स इन द ऑलमे
1: नहीं नहीं नहीं दी पॉप्स तेरे है बता तो क्या
0: इज दैट सो
1: मैडोना मैडोना
0: मैडोना के भी क्या मैडोना के
1: एगो एगो दतवा चाहिए तो सोना के दांत
0: हम ना हम
1: और मन ओमेगा डायमंड लगा दिया
0: जब मदोना

हमने बनाए हैं कॉफी चाय मिदक शो मिद मेडवेकिंग फ्रॉम ब्रास एफएस brasafest.nl 29 en 30 augustus Nabulie और बता दिए अपना परिवार दोस्तों जान पहचान से बता दीजिए brasafest op 29 en 30 augustus in GIA Event Center. Shivam Rajaram के वास में सुनिए कैसे

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

ठीक पौने छह का वक्त है मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 15 तारीख जुलाई साल 2026। आपका सेवा फिर एक बार हम करने चले आए हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। अब से 9 बजे पेश करेंगे वही प्रोग्राम जिसके साथ कुछ संगीत ऐसे हैं और उन संगीतों के साथ कुछ यादें जो जोड़े हुए हैं, उन यादों को हम फिर एक बार मिलकर ताजा करेंगे। प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर लेकर आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 9 बजे तक मेरे प्यारे सुनने वालों। तो तहे दिल से स्वागत है। पता नहीं आप कहां कहां सुन रहे होंगे इस वक्त, कहां तक उजाला रही जो कि ये धुन जो है, मेरी आवाज जो है, कहां कहां आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी को, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आज प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनो लो तीसरी बार हम बनाएंगे अनवर सरदार अनु मलिक जी का, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, और ये गाते भी हैं। तो इनके कुछ हिट सॉन्ग्स फिर एक बार प्लेलिस्ट में सजा रखा है और प्लेलिस्ट से एक एक निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी भी सुनते वक्त भी भरपूर एंजॉय करेंगे। मेरे प्यारे सुनो, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आपकी फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप अवश्य उजाला रेडियो को तार कर सकते हो। दफ्तर का तार है 02040908 07 02040908 07। और आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते 24 घंटे 7 दिन लगातार भी आप मेल कर सकते हैं। आप मेल करें info@ujala.nl। हाँ, और हमारे ये प्रोग्राम के दौरान और जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, डर्मा खीन ट्वेफल ओवर बस्तान, जब भी मैं हूँ आप स्टूडियो में सीधे मुझसे भी बातें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप व्हाट्सएप करें 02030 03 00 02030 03 00। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आज का ओपनिंग सिलेक्शन आप तक पेश करें अनु मलिक जी का एक मास्टरपीस, एक की जो काफी पॉपुलर हुआ और अभी तक जब भी चलते हैं लोग पसंद करते हैं, इसे गुनगुनाते हैं। कतिल शफाई जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो मिलकर गीत गाएंगे, द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक, 1993 का फिल्म सर से हम नगमा निकाल रहे हैं, फिल्म सर नहीं। मेरे प्यारे सुनो लो, आप एंजॉय करें भरपूर, व्हाट अ लवली नाइट, सूरज अपना चेहरा अभी तक दिखा रहे हैं, खूबसूरत दिन बीता है और खूबसूरत रात गुजरेगी अगर मिल बैठेंगे दीवाने हम और हाँ।

ये उजली चांदनी जब हसरतों को गुटगुटाएगी। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों और अपने खूबसूरत आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक कटिल शफाई के कलम से लिखा हुआ ये नगमा दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मल्लिक जिसका हम प्रोग्राम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, अन्नू मल्लिक जो नेशनल अवार्ड भी जीते हैं और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता है। इनकी साज और संगीत पर मिलकर गीत गाया गया है। फिल्म का नाम सर मेरे प्यारे सुनने वालों और सर जो है 1993 का है। नेहत इंद्रिय नेहत महेश भज्जी का डायरेक्ट क्या हुआ एक मूवी है जिसमें नाजीरुद्दीन शाह पूजा भट्ट अतुल अग्निहोत्री परेश रावल गुलशन ग्रोवर इन सभी ने जो काम किए हैं। मेरे प्यारे सुनो धीरे धीरे हो रहे हैं 3 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ सेफ। सरे 6 बजने में ऑलमोस्ट 3 मिनट बाकी है। फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और तहदिल से आप सभी को फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। अनु मलिक जी का तीसरा प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। थोड़ा सा हमेशा की तरह आपको झुलाएंगे, मिलेनियम के बाद ले चलेंगे, उसके बाद हम 90s में फिर वापस तो मिलेनियम तो फिर 90s तू जाने तो जैसे झुलवा झूले है उसी तरह हम आपको झुलाएंगे। हमेशा की तरह हमारी ये प्रोग्राम जब भी मैं सजाता हूँ तो पुराने होते हैं तो एक नए होते हैं तो फिर पुराने। ये है नगमाओं का सीढ़ी मेरे प्यारे सुनने वालों। कभी हम चढ़ते हैं और कभी हम उतरते हैं तू जाने तो। समीर का लिखा हुआ गीत अब की बार एक काफी पॉपुलर सॉन्ग उन दिनों और आज भी अगर चल रहे हैं तो लोग पसंद भी करते हैं। 20 साल हो गए हैं ये गीत रिलीज जो हुए हैं और अभी तक ये गीत बहुत खूबसूरत लगता है सुनने में। समीर का लिखा हुआ ये गीत कुणाल गांजा वाला गाएंगे ऑफकोर्स अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। प्यारे मोहन की बात हम कर रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम प्यारे मोहन जो 2006 का एक मूवी है। आई लव यू माई एंजल।

जहां भी जाएगा तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा, क्योंकि आई लव यू माई एंजल, तुझे कभी ना मैं भुलाऊंगा। समीर का लिखा हुआ गीत कुणाल गांजावाला की खूबसूरत आवाज में गीत आप सभी ने सुने। अन्नू मलिक की साज और संगीत पर इन्होंने ये गीत गाए हैं। कुणाल जी, प्यारे मोहन फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनो वालों, 2006 का ये फिल्म, इंद्र कुमार जी जो अब हमारे बीच नहीं रहा, इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें फरदीन खान और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है विवेक ओबेरॉय और ऐशा देओल, बोमन ईरानी भी मूवी में है, अमृता राव, संजय मिश्रा जी। दिस इज यूआर मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे होंगे उजाला रेडियो पर और कॉफी ऑफ और चाय में भी इसका जिक्र भी हो रहे हैं कि शनिवार और एतवार, यहां शनिवार और एतवार वो भी 29 और 30 तारीख अगस्त को ब्रासा फेस्ट है देनहाग शहर में, नए बड़े साल जिसका नाम है जिया इवेंट्स इन द ब्यूर्ट फन सिख्तमबुर्ग दार, तो इंडोर फेस्टिवल समर एडिशन जो रचाया गया है 29 अगस्त और सोंदाग 30 अगस्त, जहां आप खनित कर सकते हैं प्रख्तक म्यूजिक, आप नाच सकते हैं, खा सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप आइए अपने दोस्तों हिति प्रेमियों के साथ और वक्त पर आप अपना टिकटी जो है आप खरीद ले लेना। चेक फॉर मेर इन्फो और ब्रासा फेस्ट .nl एंड नेचुरलक। आज मैंने सुना है कि अर्ली बर्ड जो टिकट है बैना 80% बिकाएगी, dat zijn de goedkope kaarten. Zo draal niet, wacht niet te lang. Ujala Radio ka jo event hote hain aur is tarah ka to bahut khoobsurat honge. En wie is er niet bij mij? Ik kan ze allemaal niet noemen. Maar als jij zegt van die wil ik horen, dan weet ik die zit erbij. Echt 100%. Toe bolie Umar, Umar hai. Toe bolie kanam hai. Ja, wie kan je noemen? Noem een artiest, die is erbij. Toen dan toch? Sujal hoor ik is erbij. Davinder Singh is erbij. Iedereen is erbij. Dus check de website of wacht per na tikte. Gerit Lelena. Hamari social per bhi iska zikr hamne kiye hai. Rozana chhapte hai kuch na kuch. Brasa Fest ke baare mein to www.brasafest.nl per आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा और कहां पर भी आप टिकटें खरीद सकते हैं। सेटत क्लेम अपना अखेंडा में 29 और 30 अगस्त को, जो एक शनिवार है और नतुलक सोंदाग है रविवार, वो दोनों दिन हंगामा होने वाला है जिया इवेंट सेंटर देनहाग में। मेरे प्यारे सुनो, ले चलते हैं अगले गीत की ओर, क्योंकि प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में अन्नू मलिक जी का जो तीसरा भाग हम बना रहे हैं, अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे। गीत जो इकबाल शाहीन जी ने लिखा और जो मिलकर गाएंगे कुमार सान और अलका याग्निक, ब्यूटीफुल सॉन्ग। इनके जो शब्द है, अगर आप इसे सुने तन हु प्रख्तक इस तरीफ एन हु मोई इस, इतना खूबसूरत तारीफ किया जा रहा है ये लड़का अपने प्रेमिका के लिए। तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर, दरार फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये 1993 का मूवी है।

चांद चेहरा बनाने की खातिर हजारों सितारों को तोड़ा गया है और गुलाबों गुलाबों को जोड़ा गया है। खूबसूरत गीत, प्यार का बयान, तारीफ कर रहे हैं एक दूजे को अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। खूबसूरत गीत इकबाल शहीन जी का लिखा हुआ आप सभी ने सुने हैं। अनु मलिक जिसका संगीतकार मेरे प्यारे सिनेमालो डरार फिल्म से हमने नगमा निकाले हैं और ये फिल्म नेहत इंद्रिय नेहत का है 1993। सुचित कुमार फिल्म का जो प्रोड्यूसर है और अब्बास और मुस्तान बर्मावाला ने डायरेक्ट किया है। ऋषि कपूर, अरबाज खान, जूही चौला, जॉनी लेवर, सुषमा सेठ, दिनेश हिंगू, रसाक खान और कौन है तिक्कू तालसानिया, इन सभी का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों। अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और मैं देखता हूं कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है, अभी देखते हैं कि व्हाट्सएप किसने किया है। एनी दफाल सभी व्हाट्सएपर्स को दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम कहते हैं। द्रीनेहतक से वापस 2005 की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सिनेमालो। फिल्म का नाम है वक्त और वक्त का एक रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ निकाल रहा हूं और गीत मिलकर गाएंगे अलका याग्निक अब की बार विथ उदित नारायण, ऑफ कोर्स अनु मलिक के साथ और संगीत पर कि सुबह होगी और शाम भी होगी, दिन तो गुजरते जाएंगे जाएंगे और हम तुम्हारे प्यार में जीते और मरते जाएंगे।

सुबह होगी शाम होगी। उदित नारायण और अलका याग्निक मेरे प्यारे सुनने वालों, इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मिलकर दोनों ने गाए हैं अन्नू मलिक के साथ और संगीत पर। वक्त फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त 2005 का मूवी, विपुल शाह का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ ये एक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी, राजपाल यादव और शेफाली छाया, अनु मलिक ने भी एक छोटा रोल इसमें अदा किया है। फिल्म वक्त मेरे प्यारे सुनने वालों, इस घंटे का आखिरी गीत की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। इस गीत के बाद हम 7 बजे के ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे और तमाम सूचनाओं के बाद आप सभी के सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, जो आज तीसरी बार हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं अनु मलिक जी का, और वो भी लाइफ एंड आर ए क्यू आर के स्टूडियो रोहतनाम से। आखिरी गीत इस घंटे का फ्रॉम द मूवी फूल और अंगार। फूल और अंगार 1993 का फिल्म है, नीखत इंद्रिय नीखत, कुमार सानू और साधना सरगम का एक नगमा आप सुनने को जाएंगे अनु मलिक की साज और संगीत पर। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत रानी मलिक जी ने लिखा है और एक फिल्म है सलीम अख्तर जी का प्रोड्यूस किया हुआ, अशोक गायकवाड़ ने डायरेक्ट किया है, मिथुन चक्रवर्ती और शांति प्रिया, सोनम मोनेश बैल का एक फिल्म है। तो गीत आप सुनिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिसे डरते थे वही बात हो गई। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग और फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी ये नगमा इंदवर साहब जी का लिखा हुआ जो मिलकर गाए द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सान और अलका याग्निक। मेरे प्यारे सुनने वालों, अनु मलिक के साज और संगीत पर फिल्म का नाम विजय पाथ और या विजय पट 1994 का फिल्म है। 1994 फिल्म का जो डायरेक्टर है फारूक सदीकी, अजय देवगन, टब्बू, सुरेश उबराय, रीमा लागू, गुलशन ग्रोवर, डेनी दिनजोंगपा, विकास आनंद, इन सभी का फिल्म है। मेरे प्यारे सिनोलो, 10 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो और लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज तीसरी बार अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और वो भी रात्रि में 9 बजे तक प्रोग्राम हम सजाएंगे। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, आपका यारों का यार, और फिर एक बार तहदिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार पहुंचे और अदापर्स है। द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर अनु मलिक जी, इनके टॉप सॉन्ग्स फिल्म से निकाल निकाल कर हर एक हफ्ते हम प्लेलिस्ट को सजाता है और उस प्लेलिस्ट से ये खूबसूरत नगमाएं निकाल निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूँ। बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम बनाया जा रहा है और हमने सजाए हैं कि आप सुनते वक्त भी भरपूर एंजॉय करेंगे। बेटी जी खरूनिंगा, डंकी वेल आपके ऐप के लिए, मार्सब्रुक का मफराओ, चित्रा जी और हेयर एंड्रू जी, डंकी लेवेल आपके ऐप के लिए, मफराओ सुशीला चंद्रिका सिंह जी, अहिताम सल्फेन, डंकी वेल आपके ऐप के लिए, और मफराओ कमला जी, अहिताम सल्फेन आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं। मफराओ आइलिन जी, अहित हार्लेम आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं, डंकी वेल आपके ऐप के लिए, और मफराओ इफोन दौलत जी, अहित दन हाग, डंकी वेल ओक फॉर ये ऐप इफोन। मेरे प्यारे सुनो लो, आप भी ऐप करना चाहोगे, बातें करना चाहोगे तो 02-3603-09-09 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और आपके कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते टारगेट नंबर के लिए और ईमेल एड्रेस के लिए और बाकी जितनी भी जानकारी है चेक www.ujala.nl। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग में उस लिस्ट में ये गीत भी शामिल है जरूर से जरूर। समीर का एक नगमा है जो इन्होंने लिखा है, जो अनु मलिक के साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे कुमार सानू और अलका याग्निक, 2004 का फिल्म फिदा से हम नगमा निकालते हैं कि आज कहो सनम जितना प्यार मैं उतना ही करूंगा। पेश है

आज कहूँ सनम जितना प्यार करूँ तुम्हें उतना। ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे से नौला समीर का लिखा हुआ अनु मल्लिक के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाए हैं अपनी खूबसूरत आवाजों में द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक। 2004 का फिल्म फिदा से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर कैन घोष, फरदीन खान और जिस पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है। फिल्म में शहीद कपूर और करीना कपूर जी ने भी काम किया है। मैं देखता हूँ किम शर्मा भी है और विजू खोटे और दिनेश हिंगू ये भी फिल्म में शामिल है। भैया सुनील ऐत अम्स्टरडम डंकीवाल भैया, आप कैब के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। और मफरा उषा जी ऐत दनहाख डंकीवाल उषा जी, आप कैब के लिए और आप ही एंजॉय करें क्योंकि अनु मलिक जी के नाम पर बहुत सारी खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं, निकाल रहा हूं प्लेलिस्ट से और मैं पेश कर रहा हूं एक एक खूबसूरत गीत आप सभी के खिदमत में। और इसी तरह से प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे मेरे प्यारे सिनोल। आपकी जानकारी के लिए भी मैं ये बता दूं अभी से कि कल रात्रि को मॉर्गन डोंडडाग 16 जुली यही स्टूडियो रोटरडम से सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए 3 घंटे का प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी 8 बजे रात्रि से प्रोग्राम हम सजाएंगे रात्रि में 11 बजे तक आराम करेंगे हम 8 बजे और समापित करेंगे 11 बजे। 3 घंटे लगातार विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड कुछ ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स भी हमेशा की तरह जैसे वो प्रोग्राम सजाया जाता है उसमें शामिल है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर कल रात्रि को मेरा साथ देंगे। दिल की आवाज मोरखल लाइफ हियर ऑफ यू आर। वेल वेल वेल, मैं देखता हूं 9:04 की ओर हम आपको ले चलेंगे, मतलब ये कि 10 साल वापस, क्योंकि हम 2004 में थे फिदा लेकर। अब हम आपको ले चलेंगे 1994 फिल्म का नाम है खुद्दार। मेरे प्यारे सुनने वालों, खुद्दार से गीत निकालेंगे कुछ ऐसा, एक नगमा जो मिलकर लिखा है एंड दैट इज मोई द ग्रेट इंदवर साहब जी, देव होली जी और राहत इंदौरी, ये तीनों ने मिलकर गीत लिखा है और इन तीनों का लिखा हुआ ये पॉपुलर खूबसूरत नगमा मिलकर गाएंगे अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। वंस अगेन कुमार सानू एंड वंस अगेन अलका याग्निक। खुद्दार फिल्म का नाम 1994 मेरे प्यारे सुनने वालों।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जिनालो खूबसूरत गीत, वो आंख है क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें, या इस तरह इतनी खूबसूरत प्यार का बयान जो दोनों मिलकर गाए हैं, अलका याग्निक और कुमार सानू, एक मास्टरपीस, क्योंकि ये नगमा तीन लेजेंड्स के हाथों से लिखा गया है, द ग्रेट इंदवर साहब जी, देवखोली और राहत इंदौरी जी, ये तीनों ने मिलकर नगमाएं लिखे हैं ये फिल्म के लिए, और गाने लाजवाब बेमिसाल है सभी आज के लिए। ये नगमा हमने चुन करके निकाले हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किए हैं। संगीतकार ऑफ कोर्स उन्हीं का प्रोग्राम तो हम सजा रहे हैं तीन हफ्ते लगातार, और अगले हफ्ते भी सजाएंगे, अन्नू मलिक जी। फिल्म का नाम खुद्दार, और ये फिल्म 1994 का है, नहीं तीन फिर नहीं तक। इकबाल दुरानी जी इनका डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, और जिसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, अंजना मुमताज, शक्ति कपूर, श्री राम लागू जी, रामी लेडी, और क्या नाम है, महेश आनंद जी ने काम किया है। मफराओ मिक जी, दंकवेल मफराओ मिक जी, आप कैब के लिए एंजॉय, यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर, और खास करके इतनी खूबसूरत जो बुधवार है, और अभी तक सूरज हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भरपूर एंजॉय करें अपना, इतनी खूबसूरत चेहरा दिखा रहे हैं ये सूरज, और हमें एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ये वे नो इट कि कब ये मौसम बदल जाए, है ना। अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सिनोल, तो वापस चलेंगे फन नहीं तीन फिर नहीं तक 11 साल ऊपर, और 2005 में जाकर पहुंचेंगे। फिल्म का नाम फरेब, और फरेब का एक दर्द भरा गीत हम निकालेंगे। साहित्य क्वादरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल मिलकर गाएंगे, अनु मलिक की साज और संगीत पर, कि पहले से अब वो दिन है, पॉपुलर सॉन्ग ये भी है उन दिनों, और अभी तक लोग पसंद करते हैं। पेश करता हूं, भरपूर आप एंजॉय करें।

पहले से अब वो दिन है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल जी की खूबसूरत आवाजें, सईद क्वादरी जी का लिखा हुआ ये डर भर गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मलिक के साथ और संगीत पर 2005 का मूवी फिल्म फरीब से हमने नगमा को निकाले। और अभी कुछ देर में हम एक और गीत पेश करने वाले हैं कुणाल गांजावाला जी का, जो काफी पॉपुलर हुआ और अभी तक लोग पसंद करते हैं। फिल्म फरीब जो है 2005 का, ये फिल्म डायरेक्टर दीपक तिजोरी, यू कैन टेल वेल द एक्टर डायरेक्टर ये मूवी का दीपक तिजोरी। और ये फिल्म का जो स्टार कास्ट है, मनोज बजपाई, शिल्पा शेट्टी और क्या नाम है, शमिता शेट्टी जी, परमीत सेठी और कौन है या दिखे निकाला माने रिया सेन, हाँ जी ये भी मूवी में दरिस के निकली थी। घड़ी घड़ी घड़ी की तरफ मैं देखूं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 8 बजे के ब्रेक की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। और अभी कुछ ही सेकंड्स में 12 मिनट बाकी है, वो भी 8 बजने में। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके लिए हम आपको ले चलेंगे 2005 से फिर वापस 1995, 20 यार तुरख, हाँ जी नहीं 3 यार तुरख कोई हो फ्रीक न भी ना आवे, 3 यार तुरख। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये भी दर्द भरे गीत में गिना जाता है नगमा जो हम पेश करने जा रहे हैं। और एक नगमा ऐसा है कि जो मिलकर गाएंगे अनु मलिक की साज़ और संगीत पर, क्योंकि अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, कुमार सानू और अनु मलिक ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे कि दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल मेरा तोड़ना ही था।

दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, और हमसे दिल लगाया क्यों? Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away? मजरू सुल्तानपुरी जी, द ग्रेट मजरू जी का लिखा हुआ ये दर्द भरा नगमा मिलकर गीत गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अन्नु मलिक जी, और अन्नु मलिक जी संगीतकार भी थे इस गीत का। 1995 का फिल्म अकेले हम अकेले तुम से हमने ये गीत को निकाले। मंजूर खान ने डायरेक्ट किया है, आमिर खान मनीषा कोयराला इन दोनों का एक फिल्म जिसमें देवन वर्मा भी है, तानवी आजमी और रोहनी हटनगड़ी पारिश रवल इन सभी का फिल्म। मेरे प्रिय सुनने वालों, जैसे मैंने कहा कुणाल गांजावाला का एक और नगमा आप तक हम पेश करने वाले हैं, और इस गीत के साथ इस घंटे को हम अलविदा कहेंगे। ब्रेक होंगे वो भी 8 बजे का, और 8 बजे के बाद सूचनाओं के बाद आप सभी की सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्सा, क्योंकि आपको मालूम रहे हमेशा की तरह बुधवार को रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। आखिरी मूवी का नाम है मर्डर, और ये फिल्म 2004 का है, ट्वीट एंड फिर एक रोमांटिक ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग साहिद क्वादरी जी का लिखा हुआ, कुणाल गांजावाला गाएंगे अन्नु मलिक की साज और संगीत पर। ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों मर्डर, अनुराग बासु जी ने डायरेक्ट किया है, इमरान हशमी और मलिका शेरावत का एक फिल्म। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, आप एंजॉय करें इस गीत को जो हम पेश करने जा रहे हैं।

जीने के हैं चार दिन और बाकी है बेकार दिन। आए जाए जवानी, लेकिन ये जवानी फिर लौट के ना आएंगी। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजें, मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ गीत, ये दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज तीसरी बार, बैक टू द फ्यूचर का ये प्रोग्राम तीसरी बार अन्नू मलिक के नाम, और ये था फिल्म मुझसे शादी करोगी। फिल्म 2004 का है, थ्री डेज फीड, सज्जित नाडियावाला ने प्रोड्यूस किया है, डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, अमृता अरोड़ा, अमरीश पुरी, सतीश शाह, राजपाल यादव, इन सभी का फिल्म है मेरे प्यारे सिनेवालो। ये उजाला रेडियो है और हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं हूं आपका यार रतन राम दुलारे पांडे, मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक बुधवार 6 से 9 बजे हियर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन बैक टू द फ्यूचर। और घर की तरफ मैं देख रहा हूं तो हो रहे हैं बैना पौने 8 का वक्त, नौया बैना हो गया है, क्वार्टर ओवर 8 मेरे प्यारे सुनने वालों। रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और जैसे मैंने कहा मेरे प्रिय सुनने वालों कि कल रात्रि को 16 जुलाई, हाँ जी 16 तारीख जुलाई, कल रात्रि को 8 बजे रात्रि से 11 बजे आपका सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी एकदम लाइव एंड डायरेक्ट क्यूआर के ये स्टूडियो रतनाम से विद ब्यूटीफुल। मैंने प्लेलिस्ट को देखा मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने कल प्लेलिस्ट को देखा है जो सजाया गया है कल के लिए, और मैं खुद अली मरमोली, बहुत सारे खूबसूरत नगमाए हैं, प्यार भरे सबसे ज्यादा है और कुछ दर्द भरे नगमाए भी है या खबल। तो अगर आप साथ देंगे कल तो आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे। ओके मेरे प्यारे सुनो लो, 1994 की ओर हम आपको ले चलते हैं, क्यों अभी हम थे 2004 में। नखावा 3 यार वेर तरुख नीखंतीन फिर नीखंतक, फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों इम्तिहान। इम्तिहान से गीत, पॉपुलर सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, इतना पॉपुलर ये गीत फाइज अनवर जी के कलम से जो लिखा गया और जिसका आवाज कुमार सानू दे रहे हैं, म्यूजिक अन्नू मलिक ऑफ कोर्स। ये नगमा पेश करने जा रहा हूं बैक टू द फ्यूचर में, एंजॉय।

इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग, कुमार सानू की आवाज, फैज अनवर जी, इनकी कलम से लिखा हुआ गीत सानू जी ने गाकर सुनाए हैं, वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर। मेरे प्यारे सुनने वालों, इम्तिहान फिल्म का नाम, 1994 का फिल्म जो है, 1994, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर हरी बवेजा और सैफ अली खान, सनी देओल, रवीना टंडन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, मोहन जोशी, आसरानी साहब जी, दलीप तहिल जी का एक फिल्म। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और जब भी स्वागरी हंस जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हंस लक्ष्मण सिंह जी अज सुतमेर, तो ऐप करते हैं, पावर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये स्वागरी को हम कहेंगे धन्यवाद, डंक यू वेल एंड फाइंड अ चाइल्ड टाइट माई पावर वन डॉट हैपिक नोडक। Enjoy Swagri. Dil churane wale jaan bhi chura le. Arey baap re dada, khatarnak geet pesh karne ja raha hoon mere pyare sunne walon. Jiska title hai Dil churane wale jaan bhi chura le. Devkhuli ji inka likha hua geet jo milkar gayenge Kumar Sanu ji aur Alka Yagnik, वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर। अनवर खान नतुलक वेरना बोवर, 2005 का ये जो फिल्म है, बच के रहना रे पापा। कहां है गीत, यहां है गीत, पेश करता हूं। रिमेंबर दिस इज यूआर, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए चेक www.ujala.nl। और 4 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में। 4:04, 9:30 मेरे प्यारे सुनने वालों।

जे जा आप चुरा ले। कुमार सानू और अलका याग्निक मेरे प्यारे सुनने वालों, इन दोनों की खूबसूरत आवाजें, देवखोली जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मलिक के साज और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों, बच के रहना रे बाबा फिल्म का नाम, और ये फिल्म 2005 का है। गोविंद मेनन जी ने डायरेक्ट किया है और करण खन्ना, मालिका शेरावत ऑफ शेरावत, ऐसे होना चाहिए ना, शेरावत। परी सरवल, रेखा जी, सतीश शाह और ना जाने कितने और लोग ये मूवी में काम किया है। खूबसूरत गीत आप तक हमने पेश किया है। अलमेर शहर में इस वक्त पहुंचे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मूत ओक तैनसत वैरकला इस तरह तो टोनी इसरी जी अर्थ अलमेर डंकी वाल भैया आपके ऐप के लिए। कमुआ जब करिए तो ओरजस धर के धीरे धीरे सुनिए एक कैती उजाला, तब तू देखिए कितना स्नेल से तू कमुआ करिए। खून दून नीतालिन पौजवा नमेश हिल फिल तो टोनी इसा बातोरी तो What happy Clark Stan? Oh, that happy Clark Stan. खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो, अनवर सागर का लिखा हुआ एक खूबसूरत नगमा जो वंस अगेन द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू गाएंगे, अब की बार नाइटिंगेल आशा जी के साथ। अनु मलिक ऑफ कोर्स संगीतकार, उनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आज तीसरी बार हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में, तो ऑफ कोर्स संगीतकार वो होंगे। कुमार सानू और आशा जी का ये नगमा निकाल रहा हूँ 1994 का फिल्म मैं खिलाड़ी और टू अनाड़ी। ये नगमा लाखों हंसी मेरी नजर से गुजर गए या एक मुतवाल खूह जैसे नटूर लगे डेई सा

ब्यूटीफुल सॉन्ग लाखों हसीन मेरे नजर से जो गुजर गए बस आज पहली बार दिल में उठर गए। कुमार सानू और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें अनवर सागर का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मल्लिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं इनकी साज और संगीत पर। 1994 निघंटिन फिर निघंटक का फिल्म मेरे प्यारे जिन वालों मैं खिलाड़ी और तू अनारी से हमने नगमा को निकाले। समीर मलकन का डायरेक्ट क्या हुआ ये फिल्म जिसमें अक्षय कुमार सैफ अली खान शिल्पा शेट्टी रगेश वड़ी शक्ति कपूर कादर खान जॉनी लिवर बीना जी मुकेश खन्ना रविनाथ टंडन गोगा कपूर इन सभी ने जो काम किया है आपको ले चलते हैं इस गीत के बाद अगले गीत की ओर छलान लगाएंगे और वो भी मेरे प्यारे से 9 साल का नीखियार नबुग्व 2003 में जाकर पहुंचेंगे और ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जो हमारे फेवरेट सॉन्ग के लिस्ट में भी शामिल है। ये गीत एक नगमा समीर का लिखा हुआ और जो मिलकर गाएंगे अनु मलिक की साज और संगीत पर उदित नारायण और अलका याग्निक कि हो जिया तुझको दिया। खुशी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो लो खुशी ब्यूटीफुल सॉन्ग ये नगमा

या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये था वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, भूजिया मैंने जिया तुझको दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक की ये खूबसूरत गीत, समीर का लिखा हुआ हमने आप तक पेश किया है। अनु मलिक संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, अनु मलिक जी इन्हीं का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं, और आपने देखिए कि कितनी खूबसूरत नगमाएं इनकी नाम पर लिखा गया है, कितनी खूबसूरत नगमाओं का ये म्यूजिक डायरेक्टर है। ये था फिल्म खुशी का एक नगमा, और खुशी जो है 2003 का मूवी है, 2003 बोनी कपूर का प्रोड्यूस किया हुआ मूवी, जिसका डायरेक्टर सूर्या, फरदीन खान, करीना कपूर, अमरीश पुरी, नवीनिशल, बीना जी, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, और कौन है, और कौन है यार, कहने का लगा मानी थी दिखने का लमानी तो मेरे प्यारे से लोल, मैं देखता हूं घड़ी की तरफ, या दन खा एक ओवर ना लास्ट नंबर, आखिरी गीत की ओर आज आपको ले जाएंगे। और आपको तो मालूम है, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनो, मोरखन आफंद कल 16 तारीख जुलाई, और वो भी बृहस्पतिवार का जो दिन है, दोंदड़ा है, हम आपका सेवा करने चले आएंगे, और वो भी रात्रि में 8 बजे से 11 बजे हियर ऑन यू आर उजाला रेडियो, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से, यही स्टूडियो से जहां से हम आजकल प्रोग्राम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आप सभी के लिए, यही स्टूडियो से बनाएंगे दिल की आवाज कल रात्रि को। और हमने कहा कि बहुत सारे खूबसूरत नगमाए हैं, मैंने कल प्लेलिस्ट को देखा है, और इतनी सारी खूबसूरत गाने हैं, लाजवाब बेमिसाल, हम बता नहीं सकते, आप भरपूर एंजॉय करेंगे, नए हैं पुराने भी है उसमें, और प्यार भरे बहुत ज्यादा है हमेशा की तरह, लेकिन दर्द भरे नगमाएं भी अवश्य उसमें शामिल है। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत, दन खाओ ईव तुरुख इन तैत इन खावाना 1997 मेरे प्यारे सुनो वालो, 1997 का एक फिल्म, दिल कितना नादान है, दिल कितना नादान है से निकालेंगे एक नगमा, समीर का लिखा हुआ, और जो मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक की, नजर की बात है, नजर की बात है, किसी को क्या पता। ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल कितना नादान है, महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है, और राजा रगेश्वरी, किरण कुमार, आलोक नाथ और रीमा लागू का एक फिल्म है। इस गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे, ब्रेक होंगे 9 बजे का मेरे प्यारे सुनो, उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी ने भरपूर एंजॉय की है, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर कल मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार, और खुदा हाफिज, टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

उजाला रेडियो के जरिए हम प्रोग्राम में आपको ये नामा सुनाने जा रहे हैं मुक्का सिंह के आवाज में. मुक्का सिंह ओक अंग्रेज अब उजाला Brasa Mela Fest 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Noteer het in je agenda. Brasa Mela Fest. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tubemisaal. Mukasing met Express zal er ook.

0: या तू बेमिसाल बाटे।
1: हाँ, हमारा दतवा देखतो, हमारा दतवा देखतो कितना
0: हम ही बोले कि तू काबले, तू हंसे तो दतवा ऐसे बड़ा विशाल दिखता है, चमकेगा
1: एकदम जैसे सोना
0: सोना सोना सोना
1: सोना के दांत।
0: ना ना हमने नहीं
1: मोहल्ले के तो कहे
0: ना हमें कबू ना मोहल्ले चीज सोना के दांत कहे के वो ऐसा इंसान है सुरीनाम। हम देखी ना खानी सुरीनामर्स के और सुरीनामर्स इन
1: नहीं नहीं नहीं दी पॉप स्टार है बता तो कहे
0: ऐसा सो
1: मैडोना मैडोना
0: मैडोना के भी क्या मैडोना के
1: एगो एगो दांतवा चाहिए तो सोना के दांत।
0: हम ना हम
1: और उमर उमर को डायमंड लगा दिया।
0: जब मैडोना दिखावेगा दांत हम कभी नहीं तकली हो के
1: तुम्हारे बोले चिदोरे
0: चिदोरे
1: तुम्हारे बोले और हिंदुस्तानी भी नाम मोई है बोई लॉयड दांत चिदोरल जाएगा देख ले तो जैसे को बंदर एगो बंदर भी अपन दतवन दतवन दिखावेगा तो
0: चिदोरे चिदोरे
1: कॉपफन बंदर एस तो बच्चों अब फाल्ट ओकर दत्वन
0: ओकर दत्वा रू दत्वा पहले दिखाया था। हाँ ऐसे
1: कर दत्वा बड़का है तो
0: हाँ या
1: बड़का का बेटी यार
0: या
1: ए हमार कॉफी याद ना जल्दी आएगी लो एकदम की वेल
0: देख ले तो हम सुनना हम लोग हम दिन पे दिन सीख लिया या तो एक मेहमान के चाहेंगे हाँ मेहमान के चाहेंगे मोई से
1: मेहमान जो होएगा वो भगवान के समान रहेगा।
0: वही तो तू ना जा सके कौन मेहमान है यहाँ तो
1: है? क्या जाने किस भेस में बाबा में, मिल जाए
0: मिल जाए। दस ये मुझे आल्टेड फॉर योर गास्ट गुड सॉर्गन
1: या या या सो इस दस को गाना में से ढेर चीज सीख सकेगा
0: भी। हम लोग के हिंदू फरार हम लोग के हिंदुस्तानी के गाना में ढेर हैगा बात समझे वाला और मोय हैगा और मां बात चोई रहेगा दिखाए होगी खुद फटाल है दिखाए नहीं खुद फटाल
1: नहीं मासून जो आदमी उर्दू समझेगा weet je hoe leuk dat is als je naar die nummers luistert
0: ja,
1: en je begrijpt het.
0: En je moet
1: het ook... Hoe zou het heiga luid?
0: Ja, omdat...
1: Toen vertaalkers ik in mijn naam bij
0: je. Nee. Je moet het ook niet eens durven te vertalen. Toen durf naar je vertaalker. Want dan... Omdat zo hard je naar jezelf zal jijga.
1: Het na mooi schapt heiga omen. Toch? Ja. Woorden gebruiken alba. En,
0: ja.
1: En zo'n manier per bijthouwel he woorden luid. De volgorde van een woord, hè, van een zin.
0: Ja.
1: Nou, is toch fenomenaal.
0: Fenomenaal. Echt waar. Behoud bizaal.
1: Dus John en Mina Janega, toen opneem ik het horas ze... Zij koosjes kan zeggen, thoras verdiep kan zeggen daarin. Want behoed mooi iets heiga, ja, echt waar. Het is een verrijking.
0: Zeker.
1: Ook het matlab na heiga, kito Nederlands, John heiga, krap hoort. Heiga, na. Je Nederlands wordt alleen maar beter
0: daardoor. Alleen maar beter daardoor, ja.
1: Ja. Dus ja. Pahile ego misvatte ingra, trouwens, zijn naam met u Janega.
0: Konjike?
1: पहले को मिस फातिंग रहा कि जेके लड़कन हैगा दे आर नॉट अपक्रू ये साइन उ सब के साथ तो के चाहिए नीदरलैंड्स बतियाई के घरे
0: ओ काहे के
1: वन जो उन नीदरलैंड्स बतियाईगा तो कर प्रस्ताव से स्कूल पे बहुत मोई रहेगा
0: इस ग्रोस्ट ऑल्सो
1: लेटर लेटर इज गब्लेक ना स्टडीज कई स्टडी में कि जितने ताल उ सीखी लड़कवा चाहे हिंदुस्तानी हिंदी नीदरलैंड्स ik koop boon belemmer het naar het is juist een toegevoegde waarde
0: ha.
1: Dus ik heb misverstand trouwens pijlen en heel aan mietje John thoraas ze kijk ze hebben die John thoraas ze parlik lees raha John ke thora positie raha to zijn naam me wapen lerken ze Hindustani sarmaat raha betiave ke één twee oefening er trouwens socht raha ze waren er echt van overtuigd कि जब हम लड़कवा के साथ नीदरलैंड्स बतियाबे खाली ते लड़कवा स्कूल पे बहुत
0: चलाक हो जाए चलाक हो जाएगा
1: या एंड मिस फाथिंग
0: या मैं दित कहानी में तिरुद्राए है वन ढेर हम लोग के कितना जेनरेशन अब आएगा जो अपने लड़कन के साथ हिंदुस्तानी दिस बतियाए पाए है अमदात उस अपना जाने हिंदुस्तानी बतियाए सेल्फ
1: ढेर ढेर यंगर जोन आएगा लॉयड दल्ले 20-30 यार वाली ओकर ओवर हम बतियाई बेना करी लतानी सरमात रहा बतियावे के एन ट्वेई उफेनी करत रहा उस सोचत रहा सवार दर एक फन ओवरतर्ग कि जब हम लड़कवा के साथ नीदरलैंड्स बतियाबे खाली ते लड़कवा स्कूल पे बहुत
0: चलाक हो जाए चलाक हो जाएगा
1: या एंड मिस फाथिंग
0: या मैं दित कहानी में तिरुद्राए है वन ढेर हम लोग के कितना जेनरेशन अब आएगा

हमने बनाए हैं कॉफी चाय मिदक शो मेरे मेडवेकिंग फॉर्म brasafest.nl 29 en 30 augustus. Na boelie. और बता दिए अपना परिवार दोस्तों जान पहचान से बता दीजिए ब्रासफेस्ट ऑफ 29 एन 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर कैसे टूटा है मोरी का कनवा शिवम राजाराम के आवाज में सुनिए कैसे